0: चल रही है उसमें भी हो, बेहतर तो यह है कि अगर वो बीच में कोई 10-15 मिनट के लिए उठ के जरा थोड़ी सी वॉक कर लें और फिर बैठ जाए तो ये चीज उन पे काफी उनकी बॉडी पे जो है असरअंदाज होती है। मुसलसल काम जो है ये भी सर दर्द का बायस बन जाता है। फिर उसके बाद आती है कि हमारे बैठने का अंदाज, बाज दफा हम अपने जिस्म को मरोड़ तरोड़ के बैठ जाते हैं, उस पे भी हमारे असाब पे हमारे पट्ठों पे दबाव आता है, खून जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी सर्कुलेशन में भी फर्क आता है,
1: दबाव से वो आगे जाता है
0: तो फिर वो भी सिर दर्द का बायस बन सकता है। फिर नींद की कमी तो है ही है, वो तो हमारी रूटीन बन गई है कि हमने लेट नाइट सोना होता है, वो भी वजह है। फिर इसके साथ साथ थकन, काम में हम इतने रहे कि हमने अपने वजूद को हद से ज्यादा थका लिया,
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: ये चीज भी जो है वो भी असरअंदाज होती है। और आगे चले तो इसी वजह से ही बाज दफा माइग्रेन का मसला बन जाता है, दर्द शकीका या सर का दर्द है। अब उसमें भी देखना है कि उसमें और मुकम्मल सर के दर्द में क्या वजूहत है, क्या उसमें हम किस तरह कंपेयर करेंगे,
1: ऐसी बात।
0: इसीलिए मुआलिज से मशवरा जरूरी होता है। हालांकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स से बंदा पहचान सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा जो माइग्रेन है या आम आधे सर का दर्द है ये आम दर्द से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: उनमें एक कह लें कि वॉमिटिंग की सी कैफियत होगी, मछली की कह लें कैफियत मालूम होगी, रोशनी से वो दूर भागेगा, वो कहेगा यार मैं थोड़ा मुझे अंधेरे जगह पे मुझे करें कमरे में जरा अंधेरा करें पर्दे करें, मैं थोड़ा सा अगर वो इर्द गिर्द लोग हैं तो वो उनसे थोड़ा सा साइड मारेगा,
1: ऐसी बात है जी।
0: वो सुकून चाहेगा, शोर से भागेगा दूर। ये माइग्रेन के उसकी जो पेशेंट है उसके सिम्टम्स हैं,
1: हाँ जी ऐसी बात,
0: वहां से जाके। और दूसरा फिर ये है कि जरा कोई काम करेगा तो अपने जिस्म में दर्द महसूस करेगा, और बाज दफा तो उसे ये जो बू वगैरह या स्मेल कह लें इससे भी वो एलर्जिक होता है, वो कहता है मैं इससे दूर हूँ।
1: चाहे वो अच्छी हो या
0: चाहे अच्छी है या बुरी है, बुरी से तो खैर दूर होना ही होना है, लेकिन अच्छी भी जो है
1: वो भी सर में दर्द,
0: वो भी उसके लिए तकलीफ देगी, वो कहेगा मेरे सर में दर्द शुरू होना शुरू हो गया है। और इसीलिए जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करेगा,
1: ऐसी बात है,
0: आंखों के गिर्द बाजू का तारे से झिलमिल से या अंधेरा सा आना,
1: ऐसी बात है,
0: ये चीजें हैं। तो उस पे फिर जो मुआलिज है वो उसको कंपेयर करता है जब उसके सिम्टम या उसकी केस हिस्ट्री लेता है कि ये आधे सर का दर्द है, इस सिम्टम्स के मुताबिक फिर उसका इलाज है। और इसकी वजह से बाज दफा ये होता है कि हम क्योंकि नजर हम मुसलसल अपनी इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: बाज औकात हम उसे प्रॉपर सही तरीके से इस्तेमाल भी नहीं करते तो नजर में कमजोरी, जिस तरह पहले वक्तों में लोग सुरमा डालते थे,
1: बिल्कुल डालते,
0: माएं खुद ही डाल देती थी बच्चों को, वो बच्चों को बचपन से आदत हो जाती थी, बड़े पन तक वो आंखों में सुरमा लगाते रहते थे। अब भी ऐसे बुजुर्ग हैं कि जो अभी भी सुरमा इस्तेमाल करते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: उससे आंखों की रोशनी आंखों की ताजगी बरकरार रहती है और उसकी आंखों की थकावट नहीं होती। और इसकी वजह से भी जब आंखों में कमजोरी आएगी नजर में तो इसकी वजह से भी सर दर्द रहेगा,
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: अब उसके लिए भी वो मशवरा करेगा, देखेगा अपने आप को कि यार मेरी नजर वीक हो रही है। तो इस लिहाज से सर दर्द जो है वो एक वजूहत नहीं, कई वजूहत हैं,
1: ठीक है,
0: कि आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे सिम्टम्स क्या कह रहे हैं, उसके मुताबिक फिर सर दर्द का इलाज होता है। सर दर्द तकरीबन 70-72 किस्म का है।
1: अच्छा, 70-72 किस्म के अक्साम है सर के दर्द,
0: अक्साम है। अब उसमें नोट करना होता है, खाली हम एक पेनाडोल या पैरास्टामोल खा के तो हम वक्ती तौर पे तो सर का दर्द दूर कर लेते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन बाद में जब वो होता है तो काफी बात शिद्दत से होता है और बाज दफा वो कोई नया ही मर्ज जो है वो क्रिएट करता है सामने,
1: ठीक है।
0: फिर इसी वजह से बाज दफा ये कह लें कि जिनको नजला जुकाम रेशे बलगम की शिकायत होती है वो भी सर दर्द में मुबतला हो जाते हैं, उनको भी सर दर्द होता है। अब उसमें भी तशखीस करनी होती है कि यार ये इनको नजला जुकाम है, कब से है, इनका रेशा जो है या केरा अंदर गिर रहा है हलक में दिमाग से उतर रहा है, ये चीज भी उसके लिए सर का दर्द जो है उसकी वजह से भी हो सकता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: ठीक है। अब वो सिर्फ कहाँ से पता चलेगा, वो सिर्फ मुआलिज ही बता सकता है उसको, उसकी तशखीस करके। अपने तौर पे तो उसने गोली खानी है कि यार मैं टैबलेट लूं और वो इस्तेमाल करूं और वक्ती तौर पे मैं अपना काम चाले करूं।
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: फिर बाज दफा हम लोग पानी में कंजूसी कर जाते हैं कि यार थोड़ा पिया, और बाज दफा बहुत ज्यादा ठंडा पिया,
1: ऐसी बात है,
0: पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है, पानी ठंडा निकाल दिया, फ्रिज से निकाले अभी भी। ये चीज भी नुकसान देती है, सर के दर्द को बढ़ाती है, और पानी की कमी जो है ये भी उसको मसले को बढ़ा देती है। तो इस वजह से फिर कमजोरी आएगी।
1: हाँ जी,
0: चक्कर भी इसी वजह से ही बाज लोगों को आते हैं कि जी मुझे चक्कर आते हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही तशखीस हो सकती है कि सर दर्द किस वजह से है,
1: किस वजह से हो रहा है
0: और उसका इलाज क्या है। फिर हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम, बस चंद लोग हैं जो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, उन्होंने शेड्यूल रखा है, लेकिन अक्सरियत जो है वो शायद वर्जिश से वाकफ ही नहीं है। वो वैसे बस कहते हैं यार हम चलते हैं मीलों, या हम बहुत ज्यादा सख्त काम करते हैं, तो उसी को वर्जिश से तशबीह दे देते हैं कि यार यही हमारी वर्जिश है।
1: ऐसी बात,
0: लेकिन अपने जिस्म को एक प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा मूव करना या उसको वार्म अप करना कि वो गर्म हो, तो उसमें फिर पट्ठों में लचक आती है, उसके खून का जो दुरानिया है वो भी ठीक रहता है, तो फिर सर के दर्द का सवाल पैदा नहीं होता।
1: ऐसी बात है बिल्कुल।
0: फिर बाज दफा होता है कि कुछ लोग खाना ही नहीं खाते हैं टाइम से, काम में मसरूफ है, अच्छा ठीक है रखें जी ठहर के खाएंगे, या अब टाइम ज्यादा हो गया है शाम में देख लेंगे,
1: ठीक है
0: फिलहाल चाय पी ली, बिस्किट खा लिए। ये चीज भी जब आप खाना छोड़ते हैं इसकी वजह से भी सर दर्द हो सकता।
1: अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा कि अक्सर ये आदत भी आजकल नौजवानों में पाई जाती है कि सोने से 15 मिनट पहले 10 मिनट पहले खाना खा के फिर सो गए रात को।
0: ये भी गलत है,
1: ये भी गलत तरीका है ना।
0: बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैदे का काम है कि आपने जो करा है उसने साथ साथ उसका काम जारी है,
1: ऐसी बात है,
0: वो उसको हजम कर रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: तो वो जितना आप जल्दी खाते हैं और आप उतनी देर में अपने घर में मसरूफ रहते हैं कामों में, तो उससे खाना मैदे को हजम करना आसान हो जाता है।
1: ऐसी बात है।
0: और दूसरी बात है कि वो लाइट किस्म का होता है, कोई इतना ज्यादा हैवी नहीं होता। फिर आजकल ये वाकई फैशन सा बन गया कि ठीक है यार बेड के ऊपर ही खाना है।
1: ऐसी बात।
0: और शॉर्ट से टाइम में फिर लेट जाने
1: दोपहर को भी यही होता है और रात को तो अक्सर यही माना चलता रहता है।
0: चलिए किसी हद तक है कि वो बाज में लिखा है कि आप कलोला करें, जैसे थोड़ा सा आराम कर लें वो बेहतर है, लेकिन खासकर क्योंकि दिन में आपने थोड़ा आराम भी कर लिया, उसके बाद आपने अपने मामला भी करने हैं,
1: ऐसी बात है, अपना चलना चलना है, ऐसी
0: बात, तो वो हम हो जाता है। लेकिन रात में ऐसा नहीं है, और खसूसन जैसे अब मौसम सर्द आ रहा है तो इसमें भी ऐसा ही है कि इसमें रातें तकरीबन बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तो आदमी कोशिश करता है कि यार बस ठंड है तो मैं जरा जल्दी से बस खाऊं और अपने बिस्तर में पहुंचूं। ये चीज नुकसानदेह है, उसको टाइम दें। फिर कोशिश करें कि बहुत ज्यादा चाय का, कॉफी का, इनका इस्तेमाल ना हो, एक महदूद मुनासिब मिकदार में हो जाए तो वो
1: ऐसी बात है,
0: फिर भी ठीक है चल जाता है। लेकिन अगर आप मुसलसल चाय पे हैं कि जरा सा थकावट हुई चाय ले ली, गोली खा ली चाय ले ली, या सुबह दोपहर शाम वो एक चाय तसलसल से चल रही है, तो वो चीज फिर नुकसान दे सकती है और उसकी सर दर्द की वजह भी बन सकती है। और उस वजह से फिर आप हालांकि चाय सर के दर्द को दूर करने के लिए आप चाय पीते हैं,
1: ऐसी बात है,
0: तौर पर वो सुकून देती है, लेकिन वो एक जब मुसलसल आदत बनेगी तो फिर आपका सर दर्द जो है वो चाय से भी नहीं जाएगा,
1: जाहिर सी बात है। ये तो
0: फिर आपको उसके लिए प्रॉपर एक दवाई लेनी पड़ेगी,
1: ऐसी बात है,
0: और तब जाके वो आप उससे छुटकारा पाएंगे।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: फिर नींद जो है वो तो लाजमी है, नींद के बगैर अगर आप कहें वैसे है कि 7-8 घंटे आप प्रॉपर नींद लें,
1: ठीक है,
0: लेकिन कुछ काम की नोयत ऐसी होती है कि लोग कुछ 2 घंटे, कुछ 4 घंटे, कोई 1 घंटा, लेकिन जितनी भी नींद है प्रॉपर तरीके से नींद हो, नींद में ये ना हो कि यार बस मैं उठा हूं जैसे सोया हूं 10-15 मिनट के बाद मैं उठ गया हूं, उसको प्रॉपर कुछ टाइम दें, प्रॉपर नींद करें,
1: ऐसी बात है। हाँ।
0: फिर आप जो है उसका आप सर के दर्द को नहीं अपने पे सवार करेंगे, और ना ही कभी ऐसा होगा कि आपका सर में दर्द हो रहा है। कोशिश करें कि आप अपने टाइम पे सोएं,
1: बिल्कुल,
0: और जो है ज्यादा देर तक किताब है, मोबाइल्स है या कंप्यूटर्स है,

bismillah ar-rahman ar-rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pehram 97.4 Paharpur, Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Tank. आप तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज किसकी है? ये आवाज है केसन नेचुरल्स पाकिस्तान की. जनाब ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है हुस्न और खूबसूरती की, और ये आवाज है सेहत और तंदुरुस्ती की. देखा खुदा को हमने जनाब, हर रोज की तरह आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं. दोपहर के 4 बज चुके हैं जनाब, और 4 बजते ही तीनों रेडियो स्टेशन से आपको केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम सुनने को मिलता है, शो सुनने को मिलता है, जिसका नाम है केसन टी टाइम शो. तो जनाब तमाम गर्ल्स बॉयज अंकल नानी चाची एंड चाची मामे मामी दादे दादी एंड नाना नानी ऑफ कोर्स, सभी सुनने वाले अपने अपने स्टेशन के ऊपर हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन करने वालों को ढेर सारा वेलकम, खुश आमदीद, बखैर राखले. एंड जी हाँ, मुझे कहते हैं खलील ताबे जवान, और ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर रोज मैं लेकर आता हूँ 4 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान इन तीनों स्टेशन के ऊपर. तो आज एक दफा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है. सलाम कबूल कीजिएगा एक नए दिन का, एक नई तारीख का. जी जनाब, बुध का दिन है 10 रबीउल सानी है 23 सितंबर 2026, और अस्सू का जो मीन है उसकी 8 तारीख है. तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जनाब मेरे तमाम चाहने वाले, तमाम फ्रेंड्स, तमाम दोस्त, तमाम के यूज फैंस बिल्कुल जी खैरियत के साथ होंगे, अफियत के साथ होंगे, और अपने दिन का, अपने जिंदगी का एक और दिन जो है वो इख्तिताम पजीर करने के करीब होंगे. जी जनाब, अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया हर दिन करोड़ों रुपए का है. जैसे कि उस दिन हमने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया कि किसी को अगर 10 करोड़ दिया जाए और उसे कहा जाए कि भाई कल का दिन आपके पास नहीं है, तो जाहिर बात है कि वो 10 करोड़ रुपए नहीं लेगा और वो कहेगा कि मुझे कल का दिन जीने के लिए जो है टाइम दिया जाए. तो कहने का मकसद ये है कि आपका हर दिन करोड़ों रुपए का है, तो हर आने वाला दिन, हर गुजरने वाला दिन आपके लिए नसीहत और आने वाला दिन सबक हासिल करके उसको मजीद बेहतर, बेहतरी की तरफ लेकर जाना एक अपॉर्चुनिटी होती है. इंसान अगर सीखना चाहे तो वो हर रोज सीख रहा होता है, और मैंने भी आज एक बात सीखी है, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी उस बात के ऊपर गौर कीजिएगा, और आप इस बात से कितना एग्री करते हैं, आप इस बात से कितना मुत्तफिक होते हैं, क्योंकि मैं तो 100% ये बात पढ़कर मुत्तफिक हो गया हूं. कहते हैं कि एक दफा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी कौम के पास जाओ और उन्हें दावत दो, तौहीद की दावत दो, दीन इस्लाम की दावत दो, तो कहते हैं कि जब वो अपनी कौम के पास पहुंचे तो अपनी कौम से कहा, देखो तुम्हारा और मेरा पैदा करने वाला रब एक है, उसी ने हमें पैदा किया, और वही वही हमें पालता है, वही हमें खिलाता है, वही हमें हिदायत देता है, वही हमारा मददगार होता है. इस तरह का ये मफहूम है उस पैरे का जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है अपनी कौम को दावत दे रहे थे. उसके साथ उन्होंने एक और बात की जो मेरे दिल को जाके लगी. आप अक्सर जो है डॉक्टरों के क्लिनिक के ऊपर जाएं, किसी कम्प्लेक्स में जाएं, या फिर अस्पताल में अगर आप जाएं ना, तो आपको कुरान पाक की एक आयत लिखी हुई मिलती है. एक आयत क्या है, तर्जमा भी है उर्दू उसकी जो अरबी है, वाइजा मरिस्ता फहुआ यशफीन. ये एक आयत आपको हर जगह लिखी हुई मिलती है, और उसके नीचे तर्जमा भी लिखा होता है. कभी आपने वो तर्जमा पढ़ा है? क्या है वाइजा मरिस्ता फहुआ यशफीन, क्या मतलब है इसका, इसका मफहूम क्या है, इसका तर्जमा क्या है? तो इसका तर्जमा है कि जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा रब मुझे शिफा देता है. अब यही बात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को कही थी, और वो कुरान का हिस्सा बन गई, और उसी कुरान की इस आयत को काट कर अब हर जगह इस आयत को लगाया जाता है. लेकिन आज तक मैंने भी गौर नहीं किया था इस आयत के ऊपर, और आपने भी गौर नहीं किया होगा कि इसके अंदर कितनी मुख्तलिफ बात की. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पहले 3 बातें कर रहे हैं अपनी कौम के साथ, कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही फिर से वापस बुलाने वाला है यानी मौत देने वाला है, अल्लाह ही आपकी मदद करने वाला है, अल्लाह ही आपको खिलाने और पिलाने वाला है, लेकिन जब बात आती है बीमारी की, जब बात आती है बीमारी की, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते
कि अल्लाह ही आपको बीमार करता है और अल्लाह ही आपको शिफा देगा। गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर, बहुत गौर कीजिएगा। ये जो आयत है इसमें कहा गया है, तर्जमा जो है वो ये है कि जब मैं बीमार होता हूं तो मेरा रब मुझे शिफा देता है। यहां पर ये नहीं कहा गया कि जब आपका रब, जब मेरा रब मुझे बीमार करता है तो वो मुझे शिफा भी देता है। तो इस आयत का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर जो बीमारियां आती हैं, जो मुसीबतें आती हैं, वो आपके रब की तरफ से, आपका रब इतना जालिम नहीं है कि आपको बीमारियों में मुबतला करे। वरना तो यहां पर कहा जाता ना कि अगर, यानी कि जो रब आपको बीमार करता है वही आपको शिफा भी देगा। नहीं, वहां पर कहा गया कि जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है। तो इसकी तफसीर ये निकली है कि इंसान के ऊपर जो बीमारियां आती हैं, जो मुश्किलात आती हैं, उसके अपने अमाल की वजह से आती है। बेशक इस दुनिया के अंदर कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी चीजों के ऊपर इख्तियार दिया हुआ है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। एक शुगर का मरीज है जिसको शुगर लाहक हो गई है, डॉक्टर ने उसको कहा है कि उसने परहेज करनी है, साथ में उसने शुगर की दवाई भी खानी है। अब वो क्या करता है, दो तीन दिन खाता है, फिर उसके बाद दो तीन दिन खाता है गोलियां, मीठी चीज नहीं खाता, ठीक रहता है, सेहतमंद। लेकिन वो कहते हैं मैं छोड़ देता हूं। इख्तियार है ना आपके पास, उसने छोड़ दिया, क्या होगा? तबीयत बिगड़ती जाएगी, बिगड़ती जाएगी, और एक हफ्ते के अंदर वो बंदा इस दुनिया से चला जाएगा। इख्तियार है ना इंसान के पास, अगर वो बीमारी के इलाज ना करे, दवाई ना ले, तो क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन कुछ लोग उसी बीमारी के साथ 40-40 साल गुजार देते हैं, उसी बीमारी के साथ 50 साल भी गुजार देते हैं। लेकिन वही बंदा अगर परहेज नहीं करेगा, गोलियां नहीं खाएगा, तो शुगर का मरीज एक हफ्ते के अंदर दुनिया से चला जाएगा। क्या है, अल्लाह ने इंसान को कुछ इख्तियार भी दिया हुआ है कि वो अपने अकल का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। तो ये आयत हमें बताती है कि हम अपनी कोताहियों से, अपने गुनाहों से मुंह ना फेरें, अस्तगफार करें, और इन आफतों को, मुसीबतों का अपने ऊपर आने से पहले अपनी जान छुड़ाएं, क्योंकि आपका रब सालिम नहीं है कि वो आपको इस तरह की मुसीबतों में धकेले। ये जुमला, ये आयत बहुत बड़ी हकीकत है, और इस हकीकत को हम जितनी जल्दी समझ लेना, यकीन कीजिए, उतना ही हमारे लिए आसान होगा, जिंदगी बल्कि आसान हो जाएगी।

मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले नहीं जाऊंगा, पहले आपके पास जाकर आपसे माजरत करूंगा, बाद में कारोबार की बातें होंगी टांग में जाकर, लेकिन पहले आपसे माजरत कि आप जो है मेरी बात से आपका दिल दुखा है, या मुझे कुछ यूं लगा कि आप मेरे हवाले से गलत तासुर दे रहे थे। तो उस वक्त आप जब कोई बात अपने खिलाफ सुनते हैं तो जारी बात है कि आप हाइपर भी हो जाते हैं, आपकी आवाज हाई लाउड हो जाती है, और मेरा अंदाज करने बात करने का अंदाज ही बड़ा लाउड है। आप यकीन कीजिए, मैं आम तरीके से बात कर रहा होता हूँ तो साथ वाला कहता है कि लड़ाई तो नहीं हो रही, तो शायद आपको मेरा वो जो लाउड है, लाउडनेस है मेरे बोलने की, वो शायद आपको बुरी लगी हो। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बुजुर्गों की तरह हैं, यही वजह है कि आपको मैंने अंकल का नाम दिया। मेरे बाप की तरह है, आप मेरे चाचू की तरह, मेरे मामू की तरह, आप मेरे मशर की तरह है। और आप कोई इस तरह की मैं बात करूं, आपकी शान के अंदर कमियां मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको ये मेरा लहजा बुरा लगा, मैंने जिस अंदाज में बात की, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि मेरा एतराज बुराई नहीं है, निशानदेही है, और निशानदेही हमारा दीन हमें कहता है कि जहां पर कुछ गलत हो रहा हो तो उसकी हाथ से रोको। हाथ से रोकना, ताकत से रोकना सबसे पहली बात होती है, और फिर जुबान से रोकना, ये और आपका सवाब है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो दिल ही दिल में बुरा कहना, तो आई एम रियली श्योर कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मेरी माजरत को आपने कबूल भी कर लिया होगा। और मैं बिल्कुल आज ख्वाहिश भी करूंगा कि अंकल असद जो है वो हमारे शो में आए और अपनी प्यारी प्यारी बातें, अपनी मीठी मीठी बातें और अपनी खुलूस भरी बातों से हमारे शो को चार चांद लगाएं।

0: मुझे कहते हैं खलील ताबे शमान और आप सुन रहे किसन का टी टाइम शो। आपको चाय मिली है कि नहीं मिली? मुझे अभी तक चाय नहीं मिली है। चाय ऊपर नीचे होती रहती है, इसी घंटे के अंदर मिलनी चाहिए और मुझे मिल भी जाती है चार से पांच के घंटे के दौरान। आपकी सूरत हाल जो है वो आप हमें बताएंगे 03449363366। जी जनाब 03444936363 हमारा नंबर है। सामिन किराम, वजन बढ़ाना हो या वजन कम करना हो, कमजोरी आपको महसूस हो रही है या आपको अपना जिस्म बहुत भारी लगता है, अगर आप इन मुश्किलात का शिकार हैं तो यकीन कीजिए कि केसन नेचुरल पाकिस्तान की दो प्रोडक्ट केसन वेट कम पेट कम और केसन ताकत प्लस के अंदर आपका इलाज मौजूद है। केसन वेट कम पेट कम जो है, मैं सुबह मॉर्निंग शो के अंदर भी बात कर रहा था, बहुत डीपली हम बात कर रहे थे पहाड़पुर वालों के साथ कि जो मोटापा है ना, मोटापा उसकी बड़ी वजह जो है ना वो मैदे का खराब होना होता है। उसकी बड़ी वजह जो है मैदे का खराब होना होता है। जब आपका मैदा खराब होता है तो उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम आपके सामने आते हैं जो मोटापे का सबब बनते हैं। तो आज इन्हीं असबाब के हवाले से बात करेंगे, रीजंस के ऊपर कि मोटापा किस तरह मैदे की खराबी किस तरीके से आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जनाब, क्या हाल है मोहतरम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ?
1: सर सजाद हूँ, ड्राइवर सजाद, पहले भी कॉल की थी भैया से।
0: अच्छा
1: जी, कान आते हैं इस टाइम तो आपका शो सुनते हैं तकरीबन डेली।
0: अच्छा जी, डेली सुनते हैं सजाद भाई। तो अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं आप भी? अच्छा अच्छा, नहीं आप लैया से आते हैं डेली?
1: जी जी।
0: अच्छा, तो गाड़ी है आपके पास?
1: जी जी।
0: अच्छा, एक वक्त था जब मेरी जॉब होती थी ना मेडिकल में, तो लैया मेरे पास होता था, लैया डिवीजन ना, तो लैया के अंदर मुझे बड़ा मजा आता था जब हम काम अपना खत्म कर लेते थे ना, तो मैं अपने कोलीग को कहता था कि चलो यार जो रेलवे स्टेशन है ना वहां पर चलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शुगल होता है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर, मजा आता है। तो यकीन जानिए करीबी रेलवे स्टेशन है बड़ा, और वो उधर जाकर ना हम घंटा डेढ़ घंटा उधर सवारियों को उतरते देखना, पकोड़े खाना, कोल्ड ड्रिंक ले लेना, जब गाड़ी आती है तो और जो है ना शुगल बन जाता है वहां पर ना, तो वो बड़ा मजा करता है। लैया का आपने नाम उठाया तो मुझे आपका वो प्लेटफॉर्म याद आ गया जहाँ पर बड़ा मजा आता है। तो हम तो डेरा के लोग तो वो महरूम लोग हैं कि हमारे पास रेलगाड़ी का सिलसिला नहीं है, वरना ये बहुत प्यारी सवारी है जनाब। और और आप सुना, खैरियत से हैं आप? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है अल्लाह का। ये शाम कितने बजे सर बंद होती है? कल हम गए थे सेकंड टाइम तो सर बंद थी मगरिब के बाद।
0: हाँ, मगरिब के बाद बंद होती है, हमें शरीफ बंदे शाम घर जाके पढ़ते। शुरू से तरतीब हमारी इस तरीके है कि मगरिब की नमाज हम घर जाके पढ़ते हैं ना, तो हमारे हमारे कस्टमर्स को पता है कि यार ये लोग ना देर तक कमाने के शौकीन नहीं है, ये मगरिब से पहले चले जाते हैं, तो वो बेचारे तो मगरिब से तकरीबन आजकल 6:20 पर हो रही है, तो हम 6:15 6:10 पर बस छुट्टी हो जाती है हमारी।
1: ठीक,
0: तो आप कोशिश करें 6 से पहले आ जाएंगे। जी
1: जी सर, वो कुछ लेना थे बस चीजें, मैं गया था सर लेकिन वो बंद थी रात को, इंशाल्लाह कल कोई टाइम निकालेंगे, टाइम से जाएंगे सर।
0: हाँ टाइम से आ जाइएगा, दिन को आ जाए 10:30 के बाद हमारी शॉप ओपन होती है, तो इंशाल्लाह आपको हर चीज मिल जाएगी। ठीक है भाई जान, सज्जाद भाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद भाई, हमारे साथ ये ड्राइवर हैं और हमारा प्रोग्राम रोजाना सुनते हैं, तो कहते हैं कि भी कुछ असर हो गया। वो दम का भी असर होता है ना, दम का भी असर होता है और हमारी बातों का भी असर होता है। तो भाई कलाम है ना, जुबान बोलना भी कलाम है, कलाम तो कलाम होता है, असर किसी न किसी तरीके से तो करता है। तो भाई को भी बातें मुतासर कर गई हैं, तो भाई आएंगे तो इंशाल्लाह जब चीजें लेके जाएंगे तो और ज्यादा इनको मजा आएगा जरा। अच्छा जी, मैदा अगर आपका ठीक ना हो तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, ये आप अपने जहन के अंदर नोट कर लें बात। जितने भी लोग मोटे हो चुके हैं ना, जितने भी लोग मोटे हो चुके हैं वो अगर माजी के ऊपर नजर दौड़ाएं तो उनका मैदा सबसे पहले खराब हुआ होगा। कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल है
0: जी? जनाब मुलाजिम परदेसी रणवाल को और मदरसा सुहेल को हैं जी, गलत नाम है
2: जी? जी ठीक है बिल्कुल, जी खैर
0: जी जी शुक्र अल्लाह का करम है, अल्लाह का सुनते पहले सारा प्रोग्राम
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ
0: ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਾਜੀ ਜ਼ਰੀ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਇਕੱਠੇ ਆਣਾ ਕਿ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਮਾਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਦਰਜਨ ਭੇਜੋ ਬਈ ਫਜਰ ਸ਼ਾਮ ਆਵਾਮ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਹੀ ਗਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ
2: ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਟਾਂਗ ਦੋ ਤੇ ਵਾਤ ਸਾਧ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
0: ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਲ ਅਸਦ ਕੋ ਸਮਾਨ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਨ ਗਾਲੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਕਲ ਅਸਦ
2: ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਪਨਾ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਤੇ ਹੀ ਨੇ ਵਾਤ ਸਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਟਾਪ ਕੇ ਵਾਤ ਲੈ ਸੋ ਟਾਪ ਦੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁਆਇਨਾ ਨਾਲ ਮਾਲ
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸੋ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਸੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਵਾ ਟਾਂਗ ਦੋ ਵੈਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾ ਕੋ ਮਿਲ ਸੂ ਤੇ ਵਾ ਤਾ ਗੁਦੇ ਵੈਸੋ
2: ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਮਿਲੂ ਤਾਂ
0: ਉਹ ਵਾ ਤੁਹਾ ਕੋ ਸ਼ੋ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ ਸੂ ਠੀਕ ਹੈ
2: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਕੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ
0: ਓਕੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਸੈਨ ਹਮਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਦੇਸੀ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਤਾਕਤ ਪਲਸ ਬਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰਨ ਆਪਕੋ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੇ ਜਿਸਮ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈ ਜਨਾਬ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਉਨਕੇ ਜੋ ਫਵਾਇਦ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਲੋਕੋ ਕੋ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ
3: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ
0: ਅੰਕਲ ਅਸਦ ਆ ਚੁਕੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੂੰ
3: ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਕਲ ਅਸਦ ਜਨਾਬ
0: ਕੈਸੇ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੈਸੇ ਹੈ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕੀ ਆਪਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬਤਾਇਆ ਮੁਝੇ
3: ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਕਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਪਾਣੀ ਮੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ
0: ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ
3: ਔਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਔਰ ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਬੇਟਾ ਸਭ ਨੰਬਰ ਆਪਨੇ ਲੈ ਲੀਏ
0: ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੁਝੇ ਦਿਲ ਸੇ ਬੜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਮੈਸੇਜ ਪੜਾ ਤੋ ਮੁਝੇ ਬੇਚੈਨੀ ਥੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਬ ਹੋਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੀ ਬੜਾਸ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੀ ਸੂਰਤ ਮੇ ਨਿਕਾਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਜ਼ਰਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੋ ਆਪ ਜੋ ਹੈ ਠੰਡੇ ਪੜ ਜਾਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਪਰ ਸਕੂਨ ਆਪਕੋ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ
3: ਨਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਕਰੇ ਆਪ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਛੋਟੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਪਰ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੀ ਜੋ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਵਾਕਈ ਆਪ
0: ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਕੋਈ ਔਰ ਬਾਤ ਮੁਝੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ

0: امن امانی میں خلیل بھائی کی کال کی تھی آل وال کریسا.
1: آل وال کریسا بالکل. چاہ پیتی ہے کہ نہیں پیتی پہلے دسو, ٹی ٹائم شو ہے سدا.
0: کوچے
1: ہماری دکان, ہماری مارکیٹ میں بھی ایک بندہ گھوم رہا تھا, کہتے کوچے اس طرح کی آواز لگا تھا, کوچے اچھا کوچا ہے وہ بول رہا ہوتا. آج مجھے سمجھ آئی ہے یار, ایک سال سے میں اس کو سن رہا ہوں.
0: ہاں
1: پیلی 3 بجے. اچھا ڈا پیالی چاہ دے
0: پیتے میں کو بہت مزہ آنے پیے. صحت جوڑ کرتے ہیں,
1: صحت جوڑ کرتے. کاوا تو یار کالا کرتا ہے بندے کو. کون ہے گلوٹا وائٹ کریم ہے نا, کالا ہو جاؤں گا تو خیر ہے. کیسن کا گلوٹا وائٹ کریم ہے نا وائٹ کرنے والا.
0: خلیل بھائی استعمال کرے کرا
1: کب, شادی کے بعد؟ شادی ہوئی ہے تمہاری پہلے یہ بتاؤ مجھے.
0: شادی ماری تو نہیں, 15 سال کا عمر ہے کرا.
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویر, تو تمہاری ابھی عمر ہے, تم 20 کے ہو جاؤ, 10 سال اور بھی ہیں, یوں سمجھو 15 ہے نا, تو 25 کی میں شادی کر لوں گی 22-23 میں.
0: نہیں نہیں میں 15 سال عمر پہ شادی مادی تو کون ہی ہے خلیل بھائی.
1: کیا ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو گے یا اپنی مرضی سے؟
0: شادی مادی نہیں کرے تو بس میں واپ ول ٹھیک ہے.
1: چڑا ٹھیک
0: ہے,
1: طبیعت بالکل ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے جی, وعدے کہ میں چھڑا بالکل ٹھیک ہے, میں کوئی شادی نہیں کرنی, خرچہ ورچہ نہیں کرنا, کیونکہ شادی تو آج کل. ہاں فیضان
0: شادی ہے
1: ارادہ ہے میرے شادی کرانا دا.
0: بولل کرتے ہیں میں بول رہا تھا ٹھیک ہے.
1: چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ. فیضان ہمارے ساتھ, مجھے پوچھ رہے ہیں شادی کا. ہاں جی یہ اور بات ہے کہ دوسری شادی کی عمر جو ہے نا میری ابھی گزرتی جا رہی ہے, پہلی میں نے کر لی ہے بھائی. جی جناب, تو آپ لوگوں کی کالز لے رہے ہیں, لیکن بھائی میں آج آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ موٹاپا جو ہے نا اس کی مین وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے نا آپ کے معدے کی خرابی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جناب, کیسے کیسے ہوتا ہے ہاضمہ اگر جب آپ کا خراب ہوتا ہے, یعنی کہ جب آپ کو آپ کی خوراک صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی, آپ کھانا کھاتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کا میٹابولزم جو ہے نا وہ سلو ہے, جس کی وجہ سے آپ کو خوراک صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہوتی, اور جو ہضم نہیں ہوتی خوراک وہ چربی کی صورت میں آپ کے جسم کے اوپر آ جاتی ہے, اور قبض اور گیس انہی لوگوں کو ہوتی ہے جن کا میٹابولزم سست ہوتا ہے, جن کا ہاضمہ درست نہیں ہوتا ہے. یہ دو بڑی وجوہات جو ہوتی ہیں نا, قبض کا ہونا اور گیس کا ہونا, یہ علامات ہیں معدے کی خرابی کی. تو کیا چیز چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے تو آپ نے معدے کو سیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے جناب. تو یہ کیوں لوگ ہمیں کہتے ہیں جب ویٹ کم پیٹ کم لے کے جاتے ہیں تو 3-4 دن بعد ہمیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں بھائی کیا رسپانس ہے, کہتے ہیں میدا بڑا زبردست ہو گیا, اب نہ کھٹی ڈکاریں آتی ہیں, نہ گیس آتی ہے, نہ قبض ہوتی ہے. تو کیا ہوا, آپ کا جو مین مسئلہ تھا نا میدے کا, وہ ویٹ کم پیٹ کم نے حل کر دیا اس کو. ٹھیک ہے جناب, آپ کے میدے کو درست کر دیا آپ کا جسم. یہی وجہ ہے کہ ایک ہفتے بعد یا 4 دن بعد لوگ ہمیں کہتے ہیں یار آج اب نہ مجھے ہلکا ہلکا جسم محسوس ہوتا ہے, اب بھاری پن محسوس نہیں ہوتا. پہلے کیا ہوتا تھا, جب ہاضمہ سست ہوتا ہے خوراک ہضم نہیں ہوتی اور آپ کو بھاری پن محسوس ہوتا ہے, سلو میٹابولزم کی وجہ سے آپ کا انجن سلو ہوتا ہے. ویٹ کم پیٹ کم کھانے سے آپ کا انجن بور ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے آپ جو بھی کھاتے ہیں, کھایا پیا ہضم ہے جی, لکڑ پتھر ہضم, سب کچھ ہضم, تو وہ کیا ہوتا ہے, فوری طور پر آپ کا جسم اس توانائی کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے, جو جتنی جلدی آپ کا جسم اس خوراک کو ہضم کرتا ہے. یہ क्या काम कर रही है? हाजमा कंट्रोल सिरप भी यही काम करता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वेट कम पेट कम की, कि जब हम आपको वेट कम पेट कम की कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उसका पहला काम ही यही होता है। कुछ लोग कहते हैं ना भाई ये मैदा ठीक करने वाली है, हाँ भाई ये मैदा ठीक करने वाली है, क्योंकि मोटापे की सबसे मेन वजह भी मैदे की खराबी है, और मैदे की खराबी की वजह से ही आगे सारे प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा एक और मसला होता है, आपके पेट के अंदर ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जरसूमे होते हैं, जरसीम होते हैं, कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसानदेह होते हैं। जब बुरे किस्म के बैक्टीरिया ज्यादा हो जाते हैं आपके मैदे के अंदर, तो जिस्म ज्यादा कैलोरीज जज्ब करने लगता है, यानी कि आपके पेट के अंदर अगर नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम ज्यादा हैं, बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं ज्यादा हैं, तो आपका जिस्म क्या करता है, मैदा नहीं, आपका जिस्म उस खुराक को जज्ब करता है जिसकी वजह से आपको भूख ज्यादा लगती है और बार बार आप खाते हैं और मोटापे की तरफ जाते हैं। यानी कि जब आपके गट के अंदर, ये जो मैदा होता है इसको गट भी कहते हैं, ठीक है जनाब, गट के अंदर फायदेमंद बैक्टीरिया भी होता है, नुकसानदेह बैक्टीरिया भी होता है। ये मैं सुबह भी बात बता रहा था, बच्चों का पेट खराब होता है तो आजकल बच्चों को एक इंजेक्शन पिलाते हैं, उसको कहते हैं एंटीरो जर्मिना का इंजेक्शन, उसके अंदर 2 लाख फायदेमंद जरासीम होते हैं, 2 लाख उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं। बच्चे को जैसे पिलाते हैं तो बच्चे का पेट फौरन ठीक हो जाता है, ठीक है जनाब, क्या होते हैं उसके अंदर सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा हार्मोन की गड़बड़ेशन जो होती है, हार्मोन जब गड़बड़ होते हैं, हार्मोन का गड़बड़ होना स्टमक के मसले से भूख और पेट भरने वाले हार्मोन जो होते हैं ना, आपके जो पेट भरने की भी हार्मोन होते हैं, लेप्टिन कहा जाता है और गिरलिन कहा जाता है, खराब हो जाते हैं, जिससे बार बार खाने को दिल करता है, तो ये हार्मोन का बिगड़ जाना ये आपके हार्मोन को भी ठीक करेगी। ये बात मैंने आपको उस दिन भी बताई है कि एक फीमेल हमारे पास आई और उन्होंने कहा कि भाई 3 दिन हो गए हैं मेरे पास वेट कम पेट कम आपकी जब खत्म हुई है ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इतना खा जाती हूँ फिर भी पेट नहीं भरता, क्या वजह होती है? ये जो 2 हार्मोन है आपके, ठीक है जनाब, एक को कहते हैं लिप्टन, ठीक है जनाब, और दूसरे को गेरलिन कहते हैं, लिप्टन एंड गेरलिन, ये 2 हार्मोन है, ये जब खराब हो जाए तो आपको बार बार भूख लगती है और आपका पेट ही नहीं भरता है। अक्सर लोग हमें यही बताते हैं, पहले क्या बताते हैं, जिस्म हल्का महसूस होने लगा है, अब जो है वो थकावट नहीं होती है क्योंकि एनर्जी आपके पास आ जाती है, दूसरा ये कहते हैं कि भूख कंट्रोल हो गई है। ये सारी वजूहत है मोटापे की, ये जो 2 हार्मोन आपके गड़बड़ करते हैं, खराब हो जाते हैं, फिर आपको हद से ज्यादा भूख लगती है और फिर आप खाते जाते हैं और फिर क्या होता है, वो मोटापे की सूरत में चर्बी आपके जिस्म पर आ जाती है, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, तेजाबियत की वजह से भी ऐसा बंदा जिसके मैदे के अंदर तेजाबियत रहती है ना, तेजाबियत रहती है, सोजिश रहती है, उसका वजन और पेट दोनों बढ़ जाते हैं। जिस भी बंदे का ये देखिए मोटापा शुरू हो रहा है मैदे की खराबी से, और हमारी जो प्रोडक्ट है वेट कम पेट कम, उसका बुनियादी काम ही आपके मैदे को ठीक करना है, मुख्तसर बात, ठीक है जनाब, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मोटापे की जो इब्तदा है वो खराब मैदे से होती है, या तो आपके मैदे के हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं और वो आप खाते जाते हैं आपका पेट ही नहीं भरता, ठीक है जनाब, या आपके मैदे के अंदर नुकसानदेह बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये एंटी बैक्टीरियल है, फक्की जो है हमारी, ये जरासीम कुश है, ये जरासीम को जाके खत्म करती है, नुकसानदेह बैक्टीरिया को जाके किल कर देगी, एच पाइलोरी के अगेंस्ट भी ये काम करती है। मैदे के जरासीम में जो सबसे बड़ा जरासीम होता है उसे एच पाइलोरी कहते हैं, ये डॉक्टर लोग समझते हैं या फिर केसन वाले समझते हैं, और कोई नहीं समझता इस चीज को, एच पाइलोरी बहुत बड़ा जरासीम होता है, इन्फेक्शन करता है या आपके जख्मी कर देता है आपके मैदे को, और उसी जरासीम को ये किल करती है, वेट कम पेट कम। तो ये बेसिकली स्टार्ट कहां से हो रही है हमारी प्रोडक्ट, आपके मैदे को ठीक करने से, समझ आ रही है, क्योंकि हमें पता है कि मोटापा आपके जिस्म पर आता क्यों है, उसकी प्राइमरी वजह क्या होती है, और जो वजूहात हैं उन वजूहात को खत्म करेगी वेट कम पेट कम, और फिर उसके बाद क्या होगा, जी जनाब, उसके बाद जैसे आपके मैदा ठीक, यानी कि आपके मैदे के अंदर जो जरासीम नुकसान पहुंचाने वाले वो खत्म हो गए, ठीक है जनाब, अच्छा उसके बाद क्या खत्म हो गया? आपकी सोजिश आपके मैदे की खत्म हो गई, आपके जो लेप्टिन है, ग्रेलिन है, दो हार्मोन्स हैं, उनको इसने ठीक कर दिया। सबसे पहले ये प्रोडक्ट केसन वेट कम पेट कम आपके मैदे के ऊपर काम करती है, और यही वजह है कि 2-3 दिन के अंदर जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे के सारे मसले खत्म हो जाएंगे, खट्टी डिकारें आपकी खत्म हो जाएंगी, आपके मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाएगी, आपके गैस का मसला खत्म हो जाएगा, आपकी कब्ज खत्म हो जाएगी। ये सारे मामलात जब खत्म होंगे तो आप मोटे काहे को होंगे, चर्बी काहे को आपके ऊपर आएगी? बिल्कुल भी आपके ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि जो प्राइमरी रूट है, जो प्राइमरी वजह है, रीजन है आपके मोटापे की, उसको इसने हल कर दिया। आपका ये मसला इसने हल कर दिया। अब उसके बाद आपके जिस्म की एक्स्ट्रा चर्बी चर्बी है, ठीक है जनाब, और ये चर्बी पिघलाने की हम कहते हैं कि केसन की वेट कम पेट कम जो है ये चर्बी पिघलाने वाली मशीन है, चर्बी पिघलाने वाली मशीन है। अगर आप इसको हमारे तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना वजन पहले 15 दिन के अंदर ही कम होता हुआ महसूस करेंगे, पहले 15 दिन के अंदर ही, ज्यादा महीनों की बात नहीं है। नंबर वन, खाने का तरीकाकार, नीम गर्म पानी के साथ 1 चम्मच नाश्ते से पहले और 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ खाने के बाद, तकरीबन आधा घंटा नाश्ते से पहले, आधा घंटा खाने के बाद, अगर आप इसी तरीके से गर्म पानी के साथ ये लेंगे, रोजाना जो है 20 से 25 कदम चलते हैं, ठीक है जनाब, 10 मिनट के लिए घर के अंदर वॉक कर लें और थोड़ी सी चीजों से परहेज कर लें। ये आप दवाई ले रहे हैं, ये आपकी मर्ज है मोटापा, इसको ये ना समझें कि आप हर चीज खाते रहेंगे, सब कुछ खाते रहेंगे और आपका वजन भी कम हो जाएगा, ना मड़ा, ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। जब तक आप परहेज को प्रायोरिटी के ऊपर नहीं रखेंगे, तली हुई चीजों से परहेज करेंगे, बर्गर छोड़ दें, पिज्जा खाना छोड़ दें, ठीक है जनाब, क्या और क्या क्या होता है जी जनाब, समोसे पकौड़े, जितनी भी तली हुई चीजें हैं उनसे परहेज करेंगे, ठीक है जनाब। एक बर्गर जब आप खाते हैं तो यूं समझ लिया आपने 8 रोटियां खा ली हैं, इतने कैलोरीज होते हैं। एक स्लाइस पिज्जे का अगर आपने खा लिया तो समझो आपने 6 रोटियां खाई हैं। आप देखें जो भी लड़कियां पिज्जा बर्गर पास्ता खाती हैं ना, डबल रोटियां होंगी वो, बिल्कुल है जी, डबल रोटी से भी कोई और चीज बन जाती है। क्या वजह होती है? ये चीजें इतनी कैलोरीज वाली होती हैं और ये आपको बहुत जल्द मोटापे की तरफ लेके जाती है। तो ड्यूरिंग आप जब ले रहे हैं वेट कम पेट कम, तो कुछ चीजों का परहेज करेंगे और हम आपको गारंटी देते हैं कि 15 दिन के अंदर आपका वजन कम होगा। अच्छा आज तो भाई 2000 वाला वक्त याद आ गया, जब हमारी सीटियां इस तरह अड़ा करती थी। चलो जी, आज हमारा VCR खराब है, सीढ़ियां सही नहीं चल रही नेट की वजह होगी। तो जनाब आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैंने अपनी बात खत्म कर ली है कि भाई वेट कम पेट कम किस तरीके से आपका वजन कम करेगी, कि सबसे पहले आपके जो मैदे के मसले हैं उनको ये हल करेगी और उसके बाद आपकी चर्बी को पिघलाएगी। ये पहली प्रोडक्ट है जिसको आप साइंसी तरीके से इसके रिजल्ट देख सकते हैं, और साइंसी तरीका ये है कि 3-4 दिन जैसे आप वेट कम पेट कम हमारी फक्की इस्तेमाल कर लें, ठीक है जनाब, उसके बाद अपने यूरिन का एक टेस्ट करवा लें, छोटे पेशाब का टेस्ट करवाएंगे तो लैब वाले से पूछेगा भैया बताना क्या आ रहा है इसके अंदर, तो वो बोलेगा चर्बी आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे बोलेगा, कीटोन्स पॉजिटिव आएंगे आपके, आप जब रिपोर्ट देखते हैं ना इसकी, क्या कहते हैं, अपने यूरिन की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें एक खाना होता है, वहां पर लिखा होता है कीटोन्स, ठीक है जनाब, तो अगर उसमें रिपोर्ट उसकी पॉजिटिव आई हो ना तो वो इशारा होता है, ठीक है, एक सेकंड, वो इशारा होता है जब कीटोन पॉजिटिव होते हैं तो इसका मतलब होता है कि चर्बी आपके जिस्म की पिघल कर आपके छोटे पेशाब के जरिए आपके जिस्म से बाहर निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम
1: जनाब, शाहजहान चिश्ती भिरा सारे नाल मड़ा मड़ा तो सीख वन तो खैर अगले तो कम से कम सीखी वनू के ना 5 महीने थी गया, 5वां महीना है सागू कारकर्दगी तो 9वें 10वें महीने सामने आवे सी, लेकिन इंशाल्लाह फिलहाल 5 महीने जैसा गिरफ्त कंट्रोल संभाल के दस्ते टांग दाल अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे दुआया ना
2: ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ
1: ਚੰਗੇ ਵਧੇ ਵੇ ਬੂੰਵਰ ਸੇ ਬਾਤ ਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਹੀ
2: ਕਹਿ ਕੋ ਮੋਟਾ ਕੀ ਦੀ ਪਏ ਕਹਿ ਕੋ ਪਤਲਾ
1: ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁ ਪਤਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਦੁਬਲਾ ਪਤਲਾ ਹੈ ਤੀਲੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਤਸਾਂ ਕੋ ਗੋਲ ਮਟੋਲ ਬਣੇ ਸੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਢਿੱਡ ਗੱਡੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤੋ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਲਾ ਬਣੇ ਸੂ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰੀਮਾ ਸੂਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਂਦੇ ਇਹ ਸਹੀ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣੇਂਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸਾਮਤ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਸਮਝੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰ
2: ਮਤਲਬ
1: ਨੇਕ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇ ਸਟਾਰਟ ਗਰੀਬ ਗਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵੇ جناب اور ہمارے یوزر بھی ہیں کیسن کے پروڈکٹ استعمال کرتے رہتے ہیں آج کل کیسن شاپ پر ڈائریکٹ تو نہیں آتے ہیں لیکن پہاڑ پور سے ہمارے پروڈکٹ جو ہے وہ خریدتے رہتے ہیں تو

0: messages Duryodhan hamare saath, sweet wali Duryodhan hamare saath, and the user of only case Natural Pakistan. Assalamu alaikum mohtaram ustad ji, shirin guftar, khush mizaj aur meethe alfaz ke malik. Ji jinaab, ab Sony aap ki bhi call aa rahi hai, Duryodhan ki, Duryodhan ka message hai, to inke aapas mein ladai ho jani hai. Assalamu alaikum.
1: वालेकुम कैसे है भाई?
0: भाई बिल्कुल ठीक है. दुर्योधन का मैसेज कट करके मैंने आपकी कॉल ली है, आपको पता होना चाहिए.
1: हाँ, मेरी वो नहीं
0: गई, बहुत अच्छी होती है. आप ठीक है, खैरियत से हैं?
1: ठीक हूँ. जो शुरू में आपने बात की है वो हमने पढ़ी तो बहुत मर्तबा है, लेकिन उसकी समझ आ जाइए.
0: आ जाइए ना समझ. तो बात ही
1: जैसे अदन कहती है ना कि आप हमारे उस्ताद है ना, मोहतरम उस्ताद, ऐसे ही है.
0: अच्छा, आप भी मुझे अपना उस्ताद बना रहे हैं.
1: जी बिल्कुल. और जो जिस भाई को ना भाई थजत में दुआएं दे तो उसे और चाहिए क्या कहने की दुआएं जो आपके साथ है, जो भाई आपको थजत में दिन दुआएं करते हैं.
0: हाँ.
1: तो फिर इंशाल्लाह कामयाबी है.
0: वो कहते हैं अगर आप कहें तो मैं थजत के वक्त आपको मैसेज भी कर दूं. किस्मत वाले हैं कि हमें हम सोए पड़े होते हैं और लोग हमें अपनी दुआओं में याद रख रहे होते हैं.
1: ये बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मत.
1: और आपसे गलती हुई कि आपने कहा दूसरी शादी, अगर भाभी ने प्रोग्राम सुना भी चाहे तो क्या आज आपको खाना
0: मैंने कहा दूसरी शादी की उम्र गुजर रही है.
1: गुजर रही है ना भाई, ऐसा कहना भी
0: वैसे दूसरी शादी
1: खतरनाक होता है.
0: अच्छा, दूसरी शादी की उम्र होती है वैसे, आप ये बताइए आप.
1: हाँ होती है.
0: कौन सी? कौन
1: सी? जब दिल टाइम
0: का उम्र क्या मुझे बताएं, दूसरी शादी की आपके ख्याल में उम्र कौन सी होती है? अगर आपने ऐसा अंदाजा लगाया हो, देखा हो दुनिया के अंदर, तो अक्सर दूसरी शादी की उम्र कौन सी होती है? पहली शादी की तो उम्र शुरू हो जाती है 20 साल से, 25 साल से, 28 साल से, बस दूसरी की कब शुरू होती है?
1: लोग 40 साल की बात भी करते हैं और इससे ज्यादा उम्र की भी करते हैं.
0: 40 साल. अच्छा, 40 साल के बाद फिर 45 साल, बस यही उम्र होती है. 60 साल तक दूसरी कर सकते हैं, फिर ना सोचें दूसरी का.
1: सोचे तो नहीं क्या कर सकते हैं.
0: चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. आप
1: सब सुनने वालों को है ना सलाम आकदिया.
0: अच्छा, अकेलिया नहीं, अकेलिया
1: अकेलिया अकेलिया. और संतान वालों को, फातिर वालों को, अल्लाह हर किसी को अपने इस्तेमाल में रखे, मेरे पूरे पाकिस्तान को.
0: आमीन आमीन.
1: सुमान को भी बहुत बहुत सलाम सब.
0: ओके, सब सुनने वालों को सलाम आप ही की तरफ से. और मजे मजे की बातें करके जा रही हैं हमारे साथ. और मैं थोड़े से पैसेज पढ़ लूं आपके, उसके बाद आपकी कॉल्स लेंगे. ठीक है ना, इनको समझ आ गई वो जो आयत कितने अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, इनको भी आज समझ आ गई. जिस तरह मुझे समझ आई, आपको भी बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी. अच्छा जी, कहते हैं कि खुश मिजाज मीठे अल्फाज के मालिक हर दिल आरजे, कैसे हैं आप एंड आपकी फैमिली मेंबर्स? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है. शो हमेशा की तरह बेमिसाल है एंड मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ. और केसन के प्रोडक्ट की क्या ही बात है, एक से बढ़कर एक प्यारी रिजल्ट देने वाले हैं. मेरी दुआ है केसन को अल्लाह इतनी बुलंदियां अता फरमाए जितना आसमान में सितारे हैं. आमीन सुमा आमीन. उस्ताद जी, आपने मेरी शील्ड क्यों नहीं भिजवाई? हाँ आए है उस दिन आपके घर वाले आए हुए थे हमारी शॉप पर एंड आयत खान को और के यूहिना सिस्टर को वापस आने पर दिल से वेलकम टू हमारा अपना किशन घर एंड स्पेशल सलाम टू ऑल सिस्टर्स. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक गिफ्ट भी पेंडिंग है और आपकी जो है शील्ड भी पेंडिंग है. शील्ड जो है शबरा उस्ताद की भी बहुत अरसे से पेंडिंग है और हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा जरूर करते हैं, उसमें डिले कभी कभी हो जाता है जैसे कि इनकी शील्ड्स के अंदर हो गया है. लेकिन इंशाल्लाह अगले महीने के अंदर ही आपको शील्ड मिलेंगे, इससे पहले कि अगला साल शुरू हो जाए, क्योंकि ये बेस्ट ईयर 2025 की शील्ड थी. हाँ जी चलो जी, ये फिर भी इनको इंशाल्लाह मिलेंगे. अच्छा जी, वाह भाई गुड, रोज मसीह हमारे साथ.

0: जी जनाब, हमारे बहुत ही पुराने लिसनर, और जब भी फेसबुक लाइव के ऊपर मैं अपनी आईडी से आता हूँ तो ये जरूर आते हैं मेरी। तो जनाब बहुत शुक्रिया, जीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और जीएम साहब, आपने अभी तक हमारी ताकत प्लस पी है कि नहीं पी है? नहीं पी तो केसर शॉप पर चक्कर लगाइए कि जनाब आपका गिफ्ट हमारे पास तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। कारी जवेद साहब, क्यों हाल है? सही चंगे वदे वे तुसा ठीक ठाक? चार बजे मिलाव लगे हुए। वाह बे वाह, सारे काला मिले पे आंदे, ना उन्हां दे पूरे मिलदे ते ना उन्हां दे ते ना उन्हां दे, पता होवे तो वजन दी किस्मत होंदी। बस कोशिश कीती वे ते साकू सन्नल गाल करन दे पेवे। अल्लाह दा शुक्र है, तुसा सुने सो सही, ठीक ठाक वे तुसा?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खरिया दे दुआएं दुआरिया।
0: मोहब्बतां भरा सलाम तो को मदनी साहब जे रे ना जीएम साहब ओई देंदे पेन के कारी साहब को सारे सलाम दे उचा।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु, सारे सलाम ही उनो को दिवाए पाते वाले स्वारू को बहुत सारे सलाम भिजाए था।
0: अच्छा, स्वारू को इंदे अलावा बिया कोई बंदा?
1: मैं कबो इन गौस मोहम्मद इसे ना मनरा दा।
0: अच्छा जी, उना को दे मन, ठीक है,
1: उना को सलाम भिजाए था। जो बाकी ठठे वाला शाहजहान खान है उना को सलाम
0: भिजाए था। बस बहुत ठीक है, बहुत ठीक है।
1: हां बहुत ठीक है, टाइम नहीं को नहीं, टाइम को नहीं,
0: टाइम को नहीं जी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। आखिरी वक्त इन जनाब कारी जवेद सनल मौजूद हैं जनाब। ये तो हमारा आज के प्रोग्राम रोजाना आप हमें सुनते हैं तीनों रेडियो स्टेशन पर एक साथ। और जीएम साहब जब आप हमें सुनते थे तो उस वक्त सिर्फ हम एक स्टेशन पर होते थे, और आपकी दुआओं से आज टांग पहाड़पुर और डेरा में एक साथ हैं, और तमाम शहरों की मोहब्बतें किसन के साथ हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह।

0: ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम लहरे है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 की नशिया। हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुनफ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन, 88.4 अमन का पैगाम, अमन का पैगाम, अमन का पैगाम।
2: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

0: इसका भरपूर खुद ही ख्याल रखें, किसी दूसरे ने आपको ये नहीं बताना कि ये चीज आपके लिए है। हाँ, एडवाइस देने वाले आपको नुस्खे टोटके बताने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन जो आपके मुफाद में होगी वो शायद बहुत कम लोग होंगे।
1: बिल्कुल ऐसी
0: तो आप अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, मोहब्बत बांटें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और बीमारियों से महफूज रखे।
1: आमीन। बहुत मेहरबानी हकीम साहब, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल जनाब, आप लोगों ने गुफ्तगु समाअत फरमाई हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और पिछले 30 सालों से देसी तिब से वाबस्ता है। पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, अब आपके शहर टांक में अपनी खिदमत का आगाज कर चुके हैं। हकीम साहब को एक माह से ज्यादा हो गया है और माशाल्लाह से बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हकीम साहब से सेटिस्फाइड भी हैं। सो अगर आपका भी कोई भी सेहत के हवाले से मसला है, मेरी बहन का, मेरे भाई का, भांजे हैं, भतीजे हैं, अक्सर बच्चों के भी बहुत सारे मसले होते हैं, तो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्त ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। और बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह हकीम साहब सबा मौजूद भी अखवल दवाखाने के, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी के, और अखवल मरीजान चिकम चेकअप मायना दा बजारी साथी चसास हम चिरे दा मसलू भी सेहत हवाले सरा दजड़म मसाइल दी, मैदे मसाइल दी, दर्दनो मसाइल दी, चिरे दिन लावा हम चसास नूर चिरे मसले दा सेहत हवाले सरा इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी डेरा जबरदस्त और यकीन इलाज पर अलशिफा दवाखाने बने मौजूद दे। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। तो बिल्कुल जनाब, इंशाल्लाह हकीम साहब अपने कल अपने क्लिनिक के मौजूद दोस्तों जेरे भेड़िया बिराम में कुछ इतों की तो सुनते पे जनाब टांग तो ही वे मसफा तो सुनते पे, चाहे तुरा कोई भी सेहत के हवाले जना सवाल है तो सा प्रोग्राम के बाद ही हकीम साहब को पूछ सकते वे। तो इंशाल्लाह हकीम साहब अपने कल मौजूद दोस्तों अपने क्लिनिक दो तेल शिफा दवाखाना, दो तेल शिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। तो बिल्कुल खवातीन हजरात, मेरे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो चाहता है। हकीम साहब कल मौजूद होंगे अलशिफा दवाखाना में सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी में। मजीद तफसीलात और मालूमात के लिए और प्रोग्राम के बाद हकीम साहब से राबता करने के लिए नंबर नोट फरमाइए 0319-55-23-404 पर आप प्रोग्राम के बाद भी हकीम साहब से राबता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हकीम साहब कल अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी में मौजूद होंगे। इसी के साथ मैं भी आप लोगों से चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान एंड अस्सलाम वालेकुम।

0: Τώρα η μαζί με ζητάρ το ίδιο για πατασαπάρ σε τέσσερα έχω χαστηθεί.
1: Για να τι σε τάρκα να πασαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ έχω χαστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ, μάρα με ζει μόχο κόρτα national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γυλάρ τα κέζι τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γυλε χάρβα το μοτάχα κούρσε κραλέ. Ο τσεκάρανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ ροδάλ σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβαλα να χασούλτι.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब्रो उधर तो ये या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चि कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजुद की ओ देमोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी ओ बला खबर अदा कपड़े सा पई पवा लो सीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चि दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दर तो ये दवा मोता चेरता मिलावी जी